वाए काया पाए तंगाए अमकुक बाबिराए लबात ब्राबिनान उतांग डलाम मकुरी पोत ततिया कुतकुआत वाए सरतारवात।